दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के 792nd एपिसोड में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आज पैनल में हमारे साथ देने वाले हैं साहिल। और जब हम लाइव जाएंगे फेसबुक पे तो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं निको हु इज गोइंग टू हेल्प अस विद वीडियोग्राफी। और साथ साथ के आपको ये भी बताते हैं जैसे हर वीडियो में हमारे साथ कोई ना कोई ज्वाइन हो जाता है एज अ गेस्ट एंड टुडे वी हैव आवर गेस्ट लुलू ऑल द वे फ्रॉम चाइना। सो हम उनसे बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स अबाउट चाइना एज वेल विच विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अगर देखा जाए स्पोर्ट्स की दुनिया में देन दैट्स व्हाट्स हैपनिंग नाउ। अभी गेम जो चल रहा है बिटवीन क्रुसेडर्स एंड ब्लूज, तो हमारे साथ है शाहिल एंड ही माइट वांट टू टेल अस क्या हो रहा है और अभी

0: सेवंस भी चल रहा है जिसमें फिजी हेड वन ऑल द पोल गेम्स तो देखते हैं आगे क्या होता है लास्ट वन डिंट वर्क आउट दैट वेल फॉर फिजी और भी काफ़ी जो गेम्स चल रहा है देखते हैं कि सहल के पास कितने समाचार हमारे हमें बताने के लिए बिफोर वी गो हेड विद आवर इंटरव्यू
1: जी हाँ एंड क्रुसेडर्स एंड ब्लूज लाइव अब चल रहा है
0: जी
1: स्टार्टिंग में विद इन फर्स्ट 8 मिनट्स ब्लूज स्कोर अ ट्राई सो इट वाज 7-0 एंड अभी इट्स 14-7 क्रुसेडर्स विनिंग
0: Oh, Crusaders is winning.
1: Yes, in 21 minutes.
0: Yeah, and काफी interesting था ना ये जो ठीक है जो stadium है, it is quite good news for Christchurch because every time यहाँ पे जो show होता है, it's almost like a full house. And
1: full house. I mean, ये game first 20 minutes was sold out.
0: Exactly.
1: And not just this game. अभी तक जितना भी events stadium में हुआ है, every event has sold out within the first couple of hours.
0: Yeah, and it's quite good as well.
1: Because you know what was a surprising bit? I think next month. I think on 12th next month France are always a game happen and that game sold out jab unhone announce kiya I went online to look for the ticket aur ticket available nahi tha na so I thought it hasn't been released yet and then thoda deri mein message aata hai it has been sold out
0: wow वेरी इंटरेस्टिंग जी हाँ काफी काफी अच्छी बात है बट एक्चुअली आई एम ग्लेड कि सोल्ड आउट हो जाता है बिकॉज अगर नहीं सोल्ड आउट होगा देन आई वोंट हैव पीपल इन द स्टेडियम टुडे आप नहीं रहोगे नो निको एंड लुलु वोंट बी हियर बिकॉज देयर बी
1: इन द स्टेडियम
0: इट्स गुड फॉर मी
1: नो एक्चुअली इफ यू वर नॉट हियर वी वुड हैव बीन डूइंग दिस शो लाइव फ्रॉम द स्टेडियम
0: दैट्स द अदर थिंग जी हाँ सो चलो हम हमेशा की तरह व्हाट वी विल डू इज वी विल प्ले अ सॉन्ग बिकॉज अदरवाइज हमारे पास समय ना हो ये जो play karne ke liye and after the song then we will get on with our interview Lulu is here prepared with all the news from China and she's pretty excited so we'll be talking to her after the song